0: जी स्टीन मैंने ट्वेंटी सिक्सटी कैंडीज लाइन सिल्वर प्रोसेस Day
1: Done.
0: I'll be out at that location. B.